0: माता है
1: महाराज आयो हो कुमार कुमार का हो टेंबा में गुरु मोहा काजी काजी ये माता है वाना चाहे वांगा हो चल चंबेर कोयम जो माउंड बाका

यो का ट्रेडिशनल मैंने कह बिल मगाई डेक में एवरीडे 5 AM का 6 PM तीन अलग रेडियो का

यो का ट्रेडिशनल मैंने कहे बिल मगाई डेक में एवरीडे 5 AM का 6 PM जिन्हें लोग रेडी होंगे